और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो।

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: और उनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला उन्होंने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा रखी है और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं।
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔
1: فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة

ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहल अयाल ने रोक रखा, आप हमारे लिए खुदा से बख्शिश मांगे। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर खुदा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे वाकिफ है।

0: जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो खुदा तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बुरी तकलीफ की सजा देगा।
1: लैसा अलल अमा हरजु वला अलल अरज हरजु वला अलल मरीज हरज वमन युतअ अल्लाह व रसूलहु।

ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं, कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि खुदा तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो।

क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको क्यों कर बनाया और क्यों कर सजाया और उसमें कहीं शिगाफ तक नहीं।

0: अब अपनी शरारत का मजा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे।
1: इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून,
0: बेशक परहेजगार बहिश्तों और चश्मों में ऐश कर रहे होंगे।

0: तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि ए है, एक तो बुढ़िया और दूसरे बांझ।
1: قالوا كذلك قال ربك

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वक्फे के बाद खुशामदीद। अबू जहल का कत्ल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैं जंगे बदर के रोज सफ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं दो नौ उम्र जवान हैं। गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपा कर मुझसे कहा, चचा जान मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मतवज्जो करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार कर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पहुंच चुके हो? बोले, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज बिन अमरू बिन जमू को दिया। दोनों हमलावरों का नाम मुआज बिन अमरू बिन जमू और माज बिन अफरा है। इब्ने इसहाक का बयान है कि मुआज बिन अमरू बिन जमू ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेजों और तलवारों की बाढ़ में था कह रहे थे, अबुल हुकम तक किसी की रसाई न हो। मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी जर्ब लगाई कि उसका पाँव निस्फ पिंडली से उड़ गया। वल्लाह, जिस वक्त ये पाँव उड़ा है तो मैं उसकी तशबीह सिर्फ उस गुटली से दे सकता हूँ जो मौसल के मार पड़ने से झटक कर उड़ जाए। उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मखल होने लगा। मैंने उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पांव रखा और उसे जोर से खींच कर अलग कर दिया। उसके बाद अबू जहल के पास मौज बिन नफरा पहुंचे, वो जख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी जर्ब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद मुआवज बिन अफरा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मारका खत्म हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? उस पर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तलाश में बिखर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे इसी हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे का रुस्वा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उसे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया है उसके भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़े रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आपने तीन बार फरमाया, वाकई उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर, तमाम हमद اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہ کو شکست دی، پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक. हम बढ़ते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ. आप जानते हैं कि आज हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट मौजूद है. 7 डिपार्टमेंट्स हैं FOST के मातहत और 7वां डिपार्टमेंट फिजिक्स है. आज आखिरी प्रोग्राम है. डॉक्टर ताहिरा साहिबा, आपसे शुरू करूंगा. आप मुझे ये बताइएगा कि प्योर साइंसेज जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, ये क्यों अपनी कदर खो रहे हैं?
4: सर, ये मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि वन कैन नेवर डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक साइंसेस. उसके बगैर मुमकिन नहीं है. लेकिन अगर हम देखें, एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, अब बेसिक साइंसेस जो हैं वो हो चुकी हुई हैं, उनके बारे में रूल्स, प्रिंसिपल्स वो डेवलप हो चुके हुए हैं, लॉज डेवलप हो चुके हुए हैं. उनको अप्लाई करके अप्लाइड साइंसेस जो हैं वो अब ज़्यादा ग्रो कर रही हैं.
3: डॉक्टर अलवी साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँगा कि क्या वजह है कि बेसिक साइंसेस जो कि एक शजर की मानिंद होती हैं, उससे हट के लोग फल खाने पे लगे हुए टेक्नोलॉजी की तरफ, आखिर क्या वजह है?
5: सर, वजह यह है कि देखें, बेसिक साइंस को किसी तौर पे हम इग्नोर नहीं कर सकते. बेसिक्स, जैसे कहते हैं कि रूट्स हैं तो ट्री ग्रो करता है. सो रूट्स आर द फंडामेंटल्स. दैट्स वाई कि बेसिक साइंस आर द फंडामेंटल्स. इनके बेस पर ही अब ये न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज अब ग्रो कर रही हैं. तो हमें ज़रूरी है कि हम पहले इनको, हाँ, इसमें कुछ न्यू एडवांसमेंट लेकर आएँ. इन बेसिक साइंसेस में हम अपने रोड मैप को रीशेड्यूल करें, रिव्यू करें और उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ, अप टू डेट करें, स्टेट ऑफ द आर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये हमारा बेसिक साइंसेस पीछे नहीं रहेंगे फिर इसमें.
3: जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया. डॉक्टर मुजस्सर अली शाह साहब, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या वजह है कि बेसिक साइंसेस अपनी कदर क्यों खोती जा रही हैं?
6: जी सर, जिस तरीके से डॉक्टर ताहिरा और डॉक्टर अलवी ने बात की, बिल्कुल सही है कि बेसिक साइंसेस जो हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है स्टार्टअप है, यहीं से हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं. जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन पे लोगों का फोकस आजकल ज़्यादा है. लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा अगर इसको बताना चाहूँ, कि जैसे आज से कुछ साल पहले एक इंजीनियर वकार अजीम साहब आए थे टीवी पर, उन्होंने पानी से गाड़ी चलाने की एक
3: नाकाम
6: कोशिश की थी और उसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्विंस भी हो गए थे कि मतलब ऐसा पॉसिबल है. लेकिन एज अ बेसिक साइंस एक्सपर्ट, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने फौरी तौर पर बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल बाय जस्ट यूजिंग अ सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी. तो इसका मतलब है, जब तक आपके पास

0: करवाने के लिए, तो हमने BS फिजिक्स प्रोग्राम को हमने रिस्ट्रक्चर किया। थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसरन, क्योंकि बाकी भी पैनलिस्ट से यही सवाल मैं करूँगा।
1: जी सर, बिल्कुल सर, हमने रीस्ट्रक्चर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले तो इसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई। फॉर स्पेशलाइजेशन हमने कहा कि BS फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेडिकल फिजिक्स में थी, AI फिजिक्स में थी, फिर नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स में उसमें हमारे पास थी। देन जब रीस्ट्रक्चर फर्दर किया तो हमने एक और फिर बैचलर प्रोग्राम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया फिजिक्स डिपार्टमेंट ने, अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ यू सर डॉक्टर करार, BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग, और स्टेट ऑफ द आर्ट है एज यू नो, जैसे कि नाम जो है टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग, बिकॉज कंप्यूटिंग एंड AI इन्वॉल्व इन ऑल फील्ड्स, दैट्स व्हाई विदाउट देयर वी कांट ग्रो। सो ये हमने कुछ इसमें कुछ न्यू इंट्रोड्यूस।
0: वेरी ट्रू डॉक्टर तारे साहब, मजीद इस पर रोशनी डालेंगे BS कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग और मजीद इसमें क्या क्या है?
2: ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, जो एक परफेक्ट ब्लेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का। इट फोकसेस ऑन द डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं इसके कुछ की बेनिफिट्स की, तो इसमें इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज स्टूडेंट्स को मिलता है, लाइक ट्रेनिंग इन VLSI डिज़ाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज विच परफेक्टली अलाइंस विद द करंट टुडेज डिमांड। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, लाइक माइक्रो एंड नैनो फैब्रिकेशन ऑफ डिवाइसेस, सर्किट डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग में। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स विल गेट एन एक्सपोजर टू कटिंग एज रिसर्च इन नैनो डिवाइसेस, स्पिनट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स।
0: बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आप भी इस पर कुछ अपना इजाफा कीजिएगा कि इस नए प्रोग्राम के तारुफ करवाने से क्या हम जदीद तकाजों को पूरा कर पाएंगे?
3: जी सर, इसमें हमने बेसिक जो कोर्सेज हैं उनको भी साथ रखा है, जैसे हम इसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी पढ़ा रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी लेके चलेंगे, फिर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे इसको फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें ऐसे प्रोग्राम्स एंटर किए हैं जो कि मतलब एडवांस लेवल के हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप मैथमेटिकल मैथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है ये जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हुए उनके ऊपर फिजिक्स भी इंप्लीमेंट करें, मैथमेटिक्स भी इंप्लीमेंट करें, और फिर उसको कंप्यूटिंग के थ्रू भी जो है उसको करवा रहे। तो ये जैसे डॉक्टर थायरा ने कहा, ये ब्लेंड है बेसिकली तीन फील्ड्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इस वजह से यहाँ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, कि इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और वहाँ पर उनके लिए जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे अपनी जॉब्स को सिक्योर करना बहुत आसान हो जाएगा।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बताया। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये नया इनिशिएटिव जो है वो अल्लाह ताला इसको बार आवर करे और समर आवर करे। इसी के साथ हम चलते हैं एक और वक्फे की तरफ, कहीं मजा आइएगा, सुनते रहिए UCP की दुनिया।

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: जी डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर अलवी, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों की ज़हनी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा हो पाए?
2: जी डॉक्टर साहब, इसमें क्योंकि हमारे पास करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है, तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ इंगेज करने के लिए हम जैसे फेस्ट है हमारा जो पिछले 2 साल से चल रहा है और हो रहा है, इनका हो रहा है उसका, तो उसमें हमने बाकायदा इंटरटेनमेंट के लिए ह्यूमन लूडो टाइप ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। इसके अलावा फिर उनमें कम्पटिशन डेवलप करने के लिए जो है पोस्टर कम्पटिशन का है, देन ब्रेन फेस्ट का है, गेम्स का है, इस तरह प्रोजेक्ट्स का है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने उसके कंपटीशन है, देन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए कि एक हमने फिजिक्स डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर करार साहब ने उसको बाकायदा आगे प्रोसीड किया, जिसमें था कि जी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक विजिट करवाया गया यहाँ पर उनके जो मेम्बर पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे एक सेमिनार करवाया गया, और उस सेमिनार में फिर बाकायदा बच्चों के लिए जो एक सीखने का बहुत सा लम्हा था, बहुत से अच्छा इंटरटेनमेंट मौजूद थी। इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हम कोशिश करते हैं कि निकात करेंगे।
1: जी डॉक्टर तारा साहब, आप इसमें मज़ीद इजाफा करेंगी?
3: जी, चूंकि मेरा फील्ड नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, तो और ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें रिसर्च और हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशंस की हैं, जैसे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फिज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर इसमें इनमोल में हम स्टूडेंट्स को नैनो मेडिसिन पे और मेडिकल फिज़िक्स पे रिसर्च करा रहे हैं, फिर हमने नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स इस्लामाबाद जो है वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के लिए विजिट्स अरेंज किए हैं, और आगे हमारे प्लान हैं कि हम रिसर्च कोलैबोरेशन भी स्टूडेंट्स की को वहाँ पर भेजने और रिसर्च करने के मौके फराहम करेंगे। उसके अलावा फिर एनवायरमेंटल फिजिक्स में रिसर्च के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके साथ हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की और हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाके काम किया बिल्कुल अप टू डेट टॉपिक्स के ऊपर, और अच्छी रिसर्च की जो कि पब्लिशेबल मटेरियल था। और इस तरह से हम ना सिर्फ इनके साथ अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ इन इंस्टीट्यूट्स और लैब्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हम बाकी भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह जो हैं वो भी अरेंज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, और इन इंस्टीट्यूट्स में भी जिनका मैंने जिक्र किया है कि वो 6 मंथ्स की शॉर्ट जो इंटर्नशिप्स हैं वो करें, उनको सर्टिफिकेशन मिले जो आगे करियर में भी उनको हेल्प करे, इसी तरह से उनको फिजिक्स के लॉज जो वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं वही उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का भी मौका मिले।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजस्सर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फेस्ट के दौरान और वैसे भी पीछे भी हमने एक दो पंजाब कॉलेज से भी हमने एक बुलाए थे, उसके बारे में बताइए वो एक्टिविटीज़ क्या थी।
4: जी, हमने PGC से जो है वो एक हसन फरीद साहब हैं जिनका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, वो एक बड़ी डायनेमिकल किस्म की वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो फिज़िक्स के बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजीली वे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने उनको बुलाया, एक बहुत अच्छी गैदरिंग थी हमारे स्टूडेंट्स की,
1: स्टूडेंट ने उसको बहुत एंजॉय भी लोग आए थे।
4: जी जी, बाकी डिपार्टमेंट से भी लोग आए और उसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बहुत अप्रिशिएट किया। वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट लिया, फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज में इंटरेस्ट लिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से परसीव भी किया कि ये चीज़ें कैसे, इवन ये कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने में पार्टिसिपेट किया और वो उन्होंने इसको एंजॉय किया। फिर उसके साथ साथ हमने जो है वो एस्ट्रोनॉमी नाइट का भी एक अरेंज किया हुआ था जिसमें हमने एक टेलीस्कोप जो है वो अपने एक हमारे एक कोलीग हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने जो है वो यहाँ पर अरेंज की, वो हमने UCP की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हमने इंस्टॉल करके वहाँ से जो है वो सियारों का नज़ारा किया, वो भी हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गई। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट अरेंज करता रहता है जिसमें हम स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ताकि खेल खेल में जो है वो स्टूडेंट जो है वो
1: अपनी मुझे बताइएगा जो आपका है खासा है माइंड गेम या ब्रेन गेम्स वो
4: जी ये मतलब मैंने यहाँ पर 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे यहाँ पर एक फेस्ट का जो चल रहा था उसमें हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, कुछ ब्रेन गेम्स जो ऐसी गेम्स जो कि मतलब बोर्ड गेम्स कहलाती हैं और अब पाकिस्तान में बहुत रेयरली जो है वो खेली जाती हैं, तो उससे हमने स्टूडेंट्स को जरा स्टिमुलेट करने के लिए उनके माइंड को और
1: थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करने के
4: जी जी बिल्कुल, तो उसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारे पास जो पीजीसी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उन्होंने जो पहले साल था उसमें उनका इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद जब दूसरे साल वो आए दे ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस गेम्स, तो फिर उनका इंटरेस्ट उससे डबल हो चुका था कि जो पहली दफ़ा अगर फर्ज करें कि हमारे पास किसी एक गेम के लिए 10 से 12 रजिस्ट्रेशन आई थी तो अगली दफ़ा वो 50-60 हो चुकी थी, तो हमें फिर उसमें जो है वो फिर हमें एक कट लगाना पड़ा कि हमारे पास इतने अवेलेबल हैं तो हम इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो ये एक मतलब एक बेहतर उसके तरफ गया, तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम इस चीज़ को
1: कंटिन्यू,
4: फन फैक्टर भी था और स्टूडेंट्स ने बहुत इसको एंजॉय किया
1: माशाल्लाह। डॉक्टर तारे साहबा आपसे पूछूंगा कि जो हमने जो नया प्रोग्राम BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस करवाया है उसके लिए आप ही किसी सजेशन पे आपने मुझे बताया था कि हम एक उस पर एक प्रीकर्सर के तौर पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और एक छोटा सा कोर्स भी करेंगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 2 से 3 हफ्तों पे मुश्तमिल होगा, वो इनिशिएटिव क्या था हमारे सामने इनको बताइएगा।
3: यस सर, ये हमने एक 3 वीक्स शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका टाइटल है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स, तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो दैट कवर्स द इंट्रोडक्शन टू बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो इसके लिए जो स्टूडेंट्स को इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी एक इंट्रोडक्टरी कोर्स, ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो उनके लिए इंट्रोडक्टरी कोर्स के तौर पर बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड मॉड्यूल्स में ये सेकंड मॉड्यूल गिव्स द डीपर नॉलेज टू द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स, एंड वाइल द थर्ड मॉड्यूल विच विल बी कवर्ड इन द थर्ड वीक ऑफ द शॉर्ट कोर्स, इसमें हम कवर करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ दिस नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एनर्जी इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो ये एक तो 3 वीक्स का जो फुल करना चाहें शुरू से इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल से लेकर एप्लीकेशन तक, और इसमें हमने ये भी फैसिलिटेट किया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी एक मॉड्यूल में या 2 में या 3 में तो वो इंडिविजुअली सिंगल मॉड्यूल में या 3ों में उसके लिए वो रजिस्टर्ड हो सकता है।
1: और इनके फ्यूचर इनके बेनिफिट्स क्या हैं थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसर, क्या फ़ायदा होगा बच्चों को?
3: बेसिकली ये इनको चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, एक तो ये इनके लिए प्री रिक्विजिट हो जाएगा अगर BS प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग सिस्टम वो ऑप्ट करते हैं, तो उसके अलावा इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर देखा जाए जो कंसल्टेंट्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में और फिर सोलर सेल्स की इंडस्ट्रीज है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की इंडस्ट्रीज में, तो उनको नॉलेज होगा उन डिवाइसेस के बारे में और वो उसको बेटर कर सकते हैं। फिर जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो आजकल यही जो रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं वो उनकी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो उसमें अगर कोई एंटर होना चाहता है तो उनको एक बेसिक नॉलेज ये कोर्स प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च के लिए एज सच बेसिक साइंसिस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये अप्लाइड कोर्सेज उस तरह से नहीं पढ़ाए जाते, तो जब आप रिसर्च के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली आपको अप्लाइड लेवल की रिसर्च नहीं पड़ती है, तो ये उनको रिसर्च की एक बुनियाद फराम करता है।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके और हेड ऑफिस के साथ मिलके एक और फिर आपने एक जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी 2 आपके हैं आप जो काम कर रहे हैं उनको मुख्तसर बताइएगा 2 मिनट में।
4: जी इनिशियली हमने एक आरवो कंपनी है जो कि पीजीसी के साथ काम करती है. दे आर डिज़ाइनिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. उसमें जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या नाइन टेंथ के, उसको एक बड़ा इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है. वो ग्लास बोर्ड है जिसके ऊपर आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स देते हैं, और उसकी खसूसियत ये है कि उस के साथ साथ आप उसमें एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं. मींस आप एक तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके साथ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है, और आप उसी को रोटेट करते हुए उसमें दिखा रहे हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशन, मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जो है वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर. तो वो एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है जिसमें आप खुद से भी राइट डाउन कर रहे हैं, इसमें वॉइस भी दे रहे हैं, उसके अलावा आप खुद भी पर्सनली अवेलेबल हैं, और उसके अलावा वह एनिमेशंस और वीडियोस भी उसके साथ चल रही हैं. तो उसके साथ हमने एक शॉर्ट सा एक वीडियो लेक्चर बनाया जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर था, जिसमें आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट को. तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमने उसमें, और अब हम उसको आगे लेके चल रहे हैं कि हम उसको आगे जाएं और हम पूरा जो कोर्स है अप्लाइड फिजिक्स का, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पूरे कोर्स को जो है वो डिज़ाइन करें और उसके लेक्चर्स जो हैं उस पर डेवलप करें.
1: और एक और इंटरनेशनल आपका जो इनिशिएटिव है.
4: जी जी,
1: इंडोनेशिया के साथ.
4: जी जी, इसी तरीके से हम इंडोनेशिया एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कुछ उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर्स देंगे
1: ऑनलाइन.
4: अभी ये इनिशियली है तो हम 2-3 लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसकी सक्सेस के ऊपर कैसा होता है. इसी तरीके से यहाँ से मुझे नॉमिनेट किया गया है तो मैं वहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर दूंगा 2-3, तो फिर देखेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इन द लॉन्ग टर्म हम इसको आगे भी लेके चलेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, मजीद लेक्चर्स और मजीद कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे.
1: दैट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट.
4: यस,
1: बिटवीन द टू यूनिवर्सिटीज एंड बिटवीन द टू स्टेट्स.
4: यस,
1: पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया.
4: जी जी बिल्कुल.
1: व्हिच इज अ बदली इस्लामिक कंट्री.
4: जी जी बिल्कुल.
1: राइट, डॉक्टर अलवी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ अरसे बाद मार्केट में जाएंगे फॉर सीकिंग डिफरेंट जॉब्स, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि हमारी जो है एक किस्म का पब्लिसिटी भी है, तो मैं उन्हें बस यही एक इकबाल के एक शेर में कहूँगा, उन्हें मैसेज दूंगा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा.
1: सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत अच्छा. डॉक्टर तारा साहब, इस तरह मुख्तसरन.
3: जी सर, मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अब आपके पास नॉलेज है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग बिग, एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट फॉर यू.
1: डॉक्टर मुदस्सिर साहब.
4: जी सर, हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स का जो है, मतलब फिजिक्स ऐसी फील्ड है जो कि हर जगह पर इम्प्लीमेंटेड है. हमने यहाँ तक देखा है कि हमारे जो बीएस के स्टूडेंट, जैसे मेरा नस का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने बीएस किया फिजिक्स में और उसके बाद वो मैकाट्रॉनिक्स में जो है उन्होंने एमफिल किया, इसी तरीके से वो आगे और मेटलर्जी की तरफ चले गए. इस तरीके से बीएस फिजिक्स जो है वो हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेड
1: है, बेसिक प्लेटफॉर्म.
4: जी, बेसिक प्लेटफॉर्म है. तो हमारे स्टूडेंट्स को बल्कि घबराने नहीं चाहिए, दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. बाहर की आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप एमएस के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसके थ्रू जो है सिर्फ फिजिक्स नहीं, क्योंकि अब फिजिक्स के अलावा फिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अप्लाइड नेचर है, उसकी वजह से आप एप्लीकेबिलिटी की वजह से आप हर जगह पर जो है जहां कहीं पर भी इसका ब्लेंड मौजूद है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं.
1: बहुत शुक्रिया, चूंकि बीइंग एचओडी फिजिक्स मेरा भी बनता है कि मैं भी अपने पास आउट होने वाले टू बी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम दूं. तो जैसे अलवी साहब ने मुझे एक मशल राह फराहम कर दी कि जी इकबाल का एक शेर है कि आसमानों पर नजर रख अंजुमो महताब देख, सुबह की तामीर करनी है तो पहले ख्वाब देख. सो अपने ख्वाबों को देखिए रात को, क्योंकि इकबाल के बकौल ख्वाबों की दुनिया भी एक बिल्कुल दुनिया होती है जो एग्जिस्ट करती है, अब दोबारा से वापस जीती जागती दुनिया में आ जाते हैं. ख्वाब देखिए, उन्हीं ख्वाबों की तामीर के लिए दिन रात مشقت کیجئے, محنت کیجئے, جافشانی سے, ایمانداری سے, صدق دل سے, اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. اسی کے ساتھ میں اپنے تینوں مہمانوں کا, ڈاکٹر مظفر علی شاہ کا, ڈاکٹر طاہرہ شجاع کا اور ڈاکٹر عاطف رحمان علوی کا مشکور ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے آج کے پروگرام میں آپ نے چار چاند لگائے. آخر میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, پاکستان

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6.

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीफी की दुनिया, आपका प्रोग्राम जुगनू. हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब अरशद नमान साहब के साथ और इनका ताल्लुक होप अपने फाउंडेशन से है. सर आपने बात की स्कूल्स की भी कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्कूल आपका एस्टेब्लिश्ड है, मैंने विजिट भी किया था, बड़ा अच्छा लगा उसको विजिट करके. आपका स्कूल किस लेवल से किस लेवल तक है, हम सामीन के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनको बताइए कि स्कूल आपका किस लेवल तक है और उसमें जो टीचर्स हैं क्या वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी को आप पढ़ा रहे हैं या वो अलग से आप टीचर्स की हायरिंग करते हैं?
2: जी बहुत शुक्रिया. स्कूल सिस्टम जो है हमारा फ्री एजुकेशन सिस्टम प्रेसिडेंट का मेजर प्रोग्राम्स में से है. एजुकेशन सिस्टम इस वक्त इटसेल्फ एक ऐसी बेहतरीन मिसाल है कि आपको विजिट करके मालूम होगा कि होप पब्लिक फाउंडेशन ने क्या एजुकेशन सिस्टम को जो है वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए लॉन्च किया है. सर इस बिल्डिंग में जो चार कनाल की बिल्डिंग है ये करोड़ों रुपए की बनी हुई एक बड़ी बिल्डिंग है जो कि डोनेशन पे बनी है और इसमें 2000 बच्चे की कैपेसिटी है जो किंडरगार्टन से लेके बच्चे और बच्ची 1000 बॉयज और 1000 गर्ल्स हैं जो कि किंडरगार्टन से लेके मैट्रिक तक प्रीवियसली चल रहे थे. तो जब जिस टाइम पे प्रेसिडेंट की फिक्र हुई कि ये मैट्रिक के बाद क्या करेंगे तो अब इंटरमीडिएट को भी जो है माशाल्लाह पिछले साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया है स्पेशली गर्ल्स के लिए. और ये जो 2000 बच्चा बच्ची है इनको किंडरगार्टन से जो 3 से 4 साल की उम्र होती है बच्चे की उसी से ऑन बोर्ड किया जाता है. इनको टेस्ट लेके इनकी प्रॉपर क्राइटेरिया और वेरिफिकेशन होती है कि ये अंडर प्रिविलेज फैमिली के बच्चे भी हैं कि नहीं. वेरिफिकेशन टीम वेरीफाई करने के बाद इनको टेस्ट लेने के बाद उनको स्कूल पे इनका एडमिशन होता है और उसके बाद इनको जो साथ में बेस्ट पार्ट के इनको ब्रिटिश सिलेबस जो है जैसे इंग्लिश मीडियम सिलेबस को ऐसे लॉन्च किया हुआ है कि वो जो अंडर प्रिविलेज फैमिली का बच्चा जब इंग्लिश मीडियम सिलेबस को पढ़ के वो तालीम हासिल करके जब बात करता है तो ये मिसालें आपको हमारी वेबसाइट पर जरूर मिलेंगी. अगर आप विजिट करें तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा. ये बच्चे जो हैं हम लोगों के साथ ये सारा टाइम मैट्रिक तक गुजारने के बाद अब इंटरमीडिएट कर रहे हैं और आगे फर्दर इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं. इनमें से मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा 1700 किड्स जो हैं, अराउंड 1700 किड्स दे आर ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड बाई दी ऑनरेबल फैमिलीज जिनकी काइंड सपोर्ट है हमारी प्रेसिडेंट के साथ और होप अपले फाउंडेशन के साथ. और जो बाकी अराउंड 300 स्टूडेंट्स हैं दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द स्पॉन्सरशिप जिसमें एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप अमाउंट हमारी आप कह लें 2500 रुपीज होते हैं जिसमें तमाम तर कॉस्ट जो है वो शामिल होती है. इसमें फ्री बैग्स, बुक्स और यूनिफॉर्म्स और इवन शूज तक जो है वो हमारी फाउंडेशन देती है. अब आपने टीचर्स का जिक्र किया, जैसे टीचर्स हमारे पास माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, उनको हम लोग ट्रेन करते हैं और उस ट्रेनिंग के बाद उनको नॉर्मल और अच्छे सैलरी स्केल पे मार्केट के कंपटीशन के मुताबिक उनको सैलरी दी जाती है. और ये 2 शिफ्ट्स में चलता है स्कूल हमारा. एक शिफ्ट में बॉयज होते हैं और एक शिफ्ट में गर्ल्स होते हैं. आफ्टरनून शिफ्ट जो है वो क्लोजिंग टाइम होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसे बड़े बड़े वॉलंटियर लोग जो हैं जैसे आपा फरीदा हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मैडम शहरी कमाल हैं, ये वो वॉलंटियर हीरोइंस हैं जो कि इस एजुकेशन सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट आके सर्विसेज दे के इसको चला रही हैं. तो अल्लाह ताला के ब्लेस्ड लोग हैं और तालीम को आगे फैला रहे हैं माशाल्लाह. अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह.
1: माशाल्लाह जी, रियली यू गाइस आर ब्लेस्ड जो जिनको अल्लाह ने मौका दिया और सुना है इस काम के लिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है. मैंने जब स्कूल विजिट किया था तो बड़ी खुशी हुई देखकर कि आपका जो किंडरगार्टन एरिया है इट्स वेरी कलरफुल और बड़ी अच्छी एक्टिविटीज बच्चों के लिए वहाँ पे नजर आई और ये देखकर बड़ी खुशी हुई. तो ये किसका आइडिया था, किसने उसको सारा डेकोरेट किया है?
2: देखें जी माशाल्लाह ये जो ब्लेस्ड वुमेन का ग्रुप है, मैं तो ये कहता हूँ अपनी फाउंडेशन का माशाल्लाह. सर ये ब्लेस्ड वुमेन प्रेसिडेंट लुबना शको के साथ चल पड़ी हैं और इनमें वॉलंटियरली तमाम डायरेक्टर 22 डायरेक्टर्स इस वक्त होप अपनी फाउंडेशन की हैं. 22 विंडोज पे काम कर रही हैं. उन विंडोज में फर्दर मजीद बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए और उनकी नीड के लिए. तो ये जितनी बड़ी बड़ी मैडम्स हैं इन्होंने अपना काइंड सपोर्ट और काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन करके इस एजुकेशन सिस्टम को बना दिया है. गोया प्रेसिडेंट ने एक अच्छी सी बिल्डिंग बना के दे दी है, उसके बाद इन ब्लेस्ड वुमेन का जो सपोर्ट है और जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल. और
1: माशाल्लाह जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे छोटे बच्चे टाइम गुजार रहे हों वो बड़ा कलरफुल और अट्रैक्टिव होने
2: जी, जैसे आपने जिक्र किया कि किंडरगार्टन के लिए जितना काइंड कंट्रीब्यूशन, जितना बेस्ट स्टफ है वो बच्चों के लिए ला के रखा गया है, और टीचर्स को इतना अच्छा ट्रेन किया हुआ है कि वो LCDs के ऊपर बच्चों को, छोटे छोटे फूल से बच्चे हैं माशाल्लाह, विजिट करेंगे तो आपको देख के भी अच्छा लगेगा कि वो जो अंडर प्रिविलेज फैमिली का जो फूल सा बच्चा है, जिसके ख्वाबों में, जिसके आंखों में इतने ख्वाब हैं और उसको अपना फ्यूचर बनाना है, हम लोगों ने उसकी मदद करनी है, तो ये एक ऐसा ट्रैक है जिसपे आपको अल्लाह ताला अजर नसीब करें तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो उनके लिए जितना फर्नीचर है, जितना उनके लिए जो प्ले एरिया है, जो उनकी फैसिलिटीज हैं, ये सारी काइंड सपोर्ट है इन्हीं डायरेक्टर्स की और उनके फर्दर रिलेशंस की। और माशाल्लाह ये बच्चे जो हैं बेस्ट जो है वो एंटरटेनमेंट ले रहे हैं स्कूल में, एजुकेशन के हवाले से भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हवाले से।
1: बिल्कुल जी, और यही चीजें हैं जो इन बच्चों को मजीद एजुकेशन हासिल करने की तरफ इंटरेस्टेड जो बनाएंगी, क्योंकि जब बच्चा इंजॉय करता है स्कूल में तो वो फर्दर कोशिश करता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, मुझे मजा आ रहा है तो मैं डेली वहां जाऊँ, बड़े शौक से जाएगा, पढ़ेगा भी और अच्छी तालीम भी हासिल करेगा। तो इस पे हम मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे एक और प्रोजेक्ट आपका याद आ रहा है, जिससे मुझे एक मूवी का नाम भी याद आ रहा है, हंगर गेम्स।
2: अच्छा,
1: हंगर गेम्स एक बड़ी अच्छी एक सीरीज बनी थी, जिसमें ये दिखाया गया कि दुनिया किस तरफ जा रही है, एक टाइम आएगा कि भूख के ऊपर, खाने के ऊपर लड़ाई हुआ करेंगी और जो जीतेगा वो खाना हासिल कर लेगा। तो हमें ये सूरत नजर आती है अपने इर्द गिर्द। तो आपका हंगर रिलीफ प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, और हाजिर होते हैं शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और आपका अपना प्रोग्राम जुगनू। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब अरशद नुमान साहब से जो कि मैनेजर पीआर हैं होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के। और नुमान साहब, बात हो रही थी ब्रेक से पहले हंगर गेम्स और हंगर रिलीफ की, तो माशाल्लाह हंगर रिलीफ प्रोजेक्ट जो है आपका वो बड़ा अच्छा मुझे अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट लगता है, उसकी जरा डिटेल्स शेयर कीजिए।
1: जी माशाल्लाह, एज फार एज कुछ इस्लामिक नॉलेज भी साथ लेके चलता हूँ मैं भी, तो भूखे को खाना खिलाना जो है एक बड़ा कीमती और बड़ा भारी अमल है और अजर है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमारी प्रेसिडेंट का जो हंगर रिलीफ प्रोग्राम है इटसेल्फ एक बोलता सबूत है, और अगर आप हमारा हंगर फूड स्टेशन विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको एवरेज बेसिस पे डेली 300 मोर देन 300 अंडर प्रिविलेज जो मजदूर तबका और जो भूखे लोग गरीब लोग हैं वो एक क्यू बना के लंच टाइम पर हमारे हंगर फूड स्टेशन के पास खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनको प्रॉपर एंटरटेन किया जाता है। हंगर रिलीफ में जो हमारा फूड स्टेशन है सर, एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आपको देख के आपको अच्छा लगे कि सुभान अल्लाह कि आप एक क्यू में अंदर आते हैं, आपके सैंक्स लगे हुए हैं, वहाँ पर आप अपने हैंड्स वॉश करते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रे दी जाती है, फिर आप ट्रे लेके अपने बेंच और स्टूल पे और टेबल्स पे बैठ जाते हैं, और ऑन दी अदर साइड ऑफ द फूड स्टेशन वॉशिंग सैंक्स बने हुए हैं जहाँ पर ये लोग अपने बर्तन जो है वो खुद से वॉश करते हैं, और इस दौरान खाने के दौरान इनको वहाँ पर स्पीकर के ऊपर हमारे जो टीम के अफसरान हैं वो विजिट करते हैं जैसे, तो वो अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं जिनमें सुन्नतें पूरी करना, उनसे उनके अंदर मोहब्बत बनाना कि एक दूसरे का ख्याल रख के खाएं, साथ वाले का ख्याल करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आज में अल्लाह ताला ने आपको ये खाना खिलाया ये खिलाया, तो उनको वो सारी वैल्यूज जो हैं वो दी जा रही हैं, उनकी कुछ ग्रूमिंग भी की जाती है जैसे, तो इटसेल्फ एक मुंह बोलता सबूत है जी, जहाँ पर गरीबों को खाना खिलाया जाता है 6 days a week और उसका मेन्यू एवरी डे बेसिस पे जो है वो राउट करता है, उसका मेन्यू प्लान हुआ हुआ है और उसके ऊपर हमारे पास बड़े अच्छे कॉन्ट्रेक्टर्स हैं जो कि हम लोगों को क्वालिटी फूड अल्लाह वास्ते जैसे ये काम होता है तो उस पर हम लोगों को बेहतरीन फेवर्स देते हैं जिसपे हम लोग ये सब उनका फूड तैयार करते हैं और वहाँ पर फूड सिस्टम। अब इसके अलावा फूड स्टेशन के साथ हमारा फूड कोर्ट भी है, ऐसी जगह जहाँ पर कॉर्ड जो है वो एक रेडी जो है वो चल के जा सकती है और लोगों को बड़ा सस्ता सा यानी कि आप कह लेंगे 40-60 rupees का कंप्लीट मील, उसमें 2 रोटियां और जिस दिन हलीम है, जिस दिन गोश्त बना हुआ है, जिस दिन चिकन बना हुआ है, तो वो लोगों को बड़ा सस्ते दामों ताकि एट द सेम टाइम हमारी फाउंडेशन और हमारी प्रेसिडेंट का विजन है कि लोगों को बेगरी की आदत ना पड़े, तो कुछ उनको बड़ी नॉमिनल प्राइसेस पे चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं तो लोगों का जो एक विजन है और जो उनकी तबीयत है वो अच्छी रहे। तो इस हवाले से हंगर रिलीफ डिपार्टमेंट जो है वो एवरीडे बेसिस पे लोगों को फ्री खाना जो है वो देता है, और जो कोर्ट है वहाँ पर ज़रूर नॉमिनल प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं और बेहतरीन खाना दिया जाता है अंदरून लाहौर में, आरे बाज़ार में, कैंट में। और ये जो फूड स्टेशन है ये गजू मता के ऊपर है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, और वहाँ पर तमाम मजदूर तबका जो बेचारे अपना घर से लंच नहीं ला सकते हैं या जो गरीब लोग क्यू में आ जाते हैं तो उनको हम लोग अकोमोडेट करते हैं। अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो हमारे साहब आपको वहाँ के वीएन पिक्चर्स और क्लिप्स नज़र आएंगे, आपको देख के पता लगेगा इंशाल्लाह कि कितना अच्छा सिस्टम जो है वो हंगर रिलीफ फूड डिपार्टमेंट ने फूड स्टेशन पर लॉन्च किया है माशाल्लाह।
0: नो डाउट जी, बहुत बड़ी खिदमत है भूखों को खाना खिलाना, और मैं ये समझता हूँ कि इसके बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है इकॉनमी के ऊपर भी। लाइक आप ये देखें कि जो डिजर्विंग क्लास आपके पास आती है फ्री खाना खाने के लिए, यही अगर वो कहीं और खाना खाने जाएंगे तो उनको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, अच्छा खासी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, वही जो पैसे वहाँ से बचाते हैं वो अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी खिदमत है मैं समझता हूँ। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बेकरी की प्रमोशन वाली बात हो सकती है इसमें, बल्कि तो उल्टा बेनिफिशियल है उनकी फैमिली के लिए कि उनको अपना वर्क आज के दौरान खाना फ्री मिल रहा है, वही अपने बच्चों के लिए कोई फ्रूट ले जाएंगे, कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए ले जाएंगे, तो बड़ा अच्छा है। आप ऑफेंस के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा।
1: जी जी माशाल्लाह सर, ये तो मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है जहाँ पर मेरी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। ये बच्चे हमारे पास 7 years से 13 years की एज लिमिट में हैं, अभी ऑर्फन हाउस में हमारे पास 23 बच्चा लोग जो है वो डिफरेंट क्लासेस में हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाते हैं। उनका जो ग्रूमिंग है ये आपको हमारा होप अपने फाउंडेशन ऑर्फन हाउस न्यू लाइफ होम के नाम से है, विजिट करके पता लगेगा कि वो बच्चे कितना वेल ग्रूम्ड हैं। उनको हमारे प्रेसिडेंट के बड़ी बड़ी दोस्तें और बाहर से आई हुई फैमिलीज जो हैं वो भी विजिट करती हैं, उनके लिए गिफ्ट ले आती हैं, उनके लिए खाने ले आते हैं, फिर उनके लिए एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हम लोगों ने ऑर्फन हाउस में ट्यूशन भी रखी हुई है, उनके लिए खाने के एटिकेट्स और मैनर्स और जो आयाज हैं उनको भी रखा हुआ है, और उनको मैनर सिखाए जाते हैं और उनको नमाज कुरान की तालीम भी दी जा रही है जहाँ पर उनको माशाल्लाह प्रॉपर ग्रूम किया जा रहा है। अब जो मैडम के ऑनरेबल दोस्त है बाप या उनकी जो फैमिली मेम्बरान है वो जब आते हैं उनको तो वो आउटिंग पे भी ले जाते हैं, कभी किसी पैकेजेस मॉल के फूड

0: या कहीं प्ले ग्राउंड एरिया पे। तो ऑर्फन हाउस हमारा बहुत हंसता खेलता एक हाउस है जहाँ पर 23 बच्चे माशाल्लाह परवरिश हो रही है उनकी। और ये तो आप लोगों को विजिट करके पता लगेगा कि हम लोग ऑर्फन हाउस पे माशाल्लाह कैसे उनको ग्रूम कर रहे हैं बच्चों को और कैसे तालीम दे रहे हैं। जी
1: ये नो डाउट हम स्टूडेंट्स को लेकर जरूर आपके पास हाजिर होंगे आपको ऑर्फनेज विजिट करने के लिए। बड़ा एक हेल्दी एक्सपीरियंस होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। लाइक माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बड़े वेल ऑफ फैमिली से ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं। जब वो जाते हैं ऑर्फनेज में तो देखकर हैरान हो जाते हैं अक्सर का स्टूडेंट्स के ये बच्चे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से अपनी जिंदगियों का हिस्सा उन्होंने बनाया हुआ उन चीज़ों को जो हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ के बड़ी फैमिली से बिलोंग करने वाले वो सोचते भी नहीं है। लाइक एक दफा तो एक बच्चे ने यहाँ तक कह दिया कि सर ये अपने बेड खुद बनाते हैं, दे मेक अप देयर ओन बेड्स, हम तो उठते हैं बिस्तर से वैसे ही मूड होया तैयार हुए और नहा धो के निकल पड़े यूनिवर्सिटी के लिए तो बिस्तर वैसे ही पड़े रहते हैं, बाद में अम्माएं या जो मेड्स होती हैं वो संभालती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस हवाले से ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चों की ग्रूमिंग है मैंने अभी रिसेंटली कल जो विजिट किया, जब मंडे को ये लोग इनका फर्स्ट डे था तो संडे को जब इनकी रिसीविंग इनको वापसी हुई है वेलकम बैक किया है तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चों ने आप लोगों ने घर पे किसने एंजॉय किया और क्या एंजॉय किया, तो उसका जवाब मैं नहायत माजरत के साथ बताना चाहूंगा कि बच्चों ने इस हवाले से कि उनको घर में मजा नहीं आया तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि जो टाइम हम लोग ऑर्फन हाउस में गुजारते हैं वही बेस्ट टाइम है, किसी ने कुछ एंजॉय नहीं किया घर में बल्कि वो बोर हुए हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रूमिंग तो कर रहे हैं कि बच्चे अपने घर वालों को जाके जो फूफो ताया चाचों के साथ रह रहे हैं ऑर्फन्स हैं वो हमारे ऑर्फन हाउस में रह के जो ग्रूमिंग हो रही है उनकी तो वो हमारे साथ ही माशाल्लाह कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे हैं। और बस अल्लाह ताला का नहायत शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये मौका भी दिया।
1: हाँ बिल्कुल जी, बड़े प्रिविलेज की बात है कि अल्लाह ने आपको इन कामों के लिए सिलेक्ट किया है। हम बात करेंगे मजीद कुछ कलेक्टिव शादियों के हवाले से भी, क्योंकि हमने पढ़ाई की बात कर ली, हमने खाने की बात कर ली, तो अब आगे शादी का भी तो एक सिलसिला चलता है ना जिंदगी में, उस पर भी बात करेंगे। आपके जो कलेक्टिव शादियों का इज्तिमाई शादियों का जो सिलसिला है उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आफ्टर शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। वक्त हो जाता है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: चुप रहो।
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम गुफ्तगु कर रहे हैं जनाब अरशद नवान साहब से, जो कि मैनेजर पीआर हैं होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के। नवान साहब, बात हो रही थी ऑफनेज की और हमने फर्दर उसको लेकर चलना है टूवर्ड्स इज्तिमाई शादियों का जो आपका प्रोजेक्ट है, जो मैस वेडिंग्स का आपका डिपार्टमेंट है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी माशाल्लाह। मतलब शादियाँ करवाना आज के दौर में जितना मुश्किल हो गया है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो लड़कियों के माँ बाप हैं, जहेज की डिमांड, फिर और सौ खर्चे, वो करना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल बंदे के लिए जो एक आम कॉमन मैन है। तो आप लोग तो बड़ी, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं आवाम की कि आप इज्तिमाई शादियां करवा रहे हैं और उसके लिए सपोर्ट भी आप प्रोवाइड करते होंगे डेफिनेटली। तो उसकी डिटेल समझाना चाहेंगे कि आप कब से ये चीज़ें कर रहे हैं और क्या सिलसिला होता है उसमें, किस लेवल के प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं।
3: जी, आई बी मोर देन हैप्पी टू टेल दिस कि सर, मैस वेडिंग हमारा हर साल जो है वो इस दफ़ा जब लास्ट ईयर किया तो उस पर लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस हुआ, इतना अप्रिशिएट किया गया कि उसको साल में दो दफ़ा कर दिया गया है। उसमें हम लोगों ने 25 जोड़ों को जो है इस शादियों के लिए ऑन बोर्ड किया है और माशाल्लाह इसके बारे में तो जितनी मालूम आपको बताई जाएँ वो बहुत कम होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम होगा हमारे पास, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक दफ़ा वेबसाइट विजिट करें। लास्ट वाला जो ईयर हम लोगों का मैस वेडिंग का हुआ था उसमें गवर्नर हाउस में हम लोगों को मौका मिला कि उनका पूरा ग्राउंड जो है उस पर हम लोगों ने अपनी केटरिंग करके 25 जोड़ों को शादियां की और उनके चीफ गेस्ट भी गवर्नर साहब खुद थे और मिसेस गवर्नर भी थी और उन लोगों ने उसको वो चीफ गेस्ट हुए हमारे। और अल्लाह ताला बस ऐसे मौके नसीब करते हैं सर। इसमें मैस वेडिंग पे हम लोग इन जोड़ों को सिलेक्ट करते हैं, पहले उनकी दरख्वास्तों को, उनकी एप्लीकेशन आती है हमारे पास, फिर हम लोग उनको वेरीफाई करते हैं कि उनके हालात मामला वाकई दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस सर। उसके बाद हम लोग इनके लिए फंड इकट्ठा करके प्रेजिडेंट डुबना को जो है, उनकी डायरेक्टर्स, इतने काम के लोग हैं इनके पास जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, उसमें स्पेशली मैडम रजिया शाह हैं जो कि उनके पास एक डिपार्टमेंट है जो कि लोगों के जोड़े जो है और उनकी शादियां करवाते हैं और वेल ऑफ फैमिली बाहर के जोड़े भी होते हैं उसमें। अब मैच वेडिंग पे जो गरीबों के लिए काम किया जाता है इसमें डायरेक्टर उज्मा और डायरेक्टर तस्नीम जो है और टीम होप अपलिफ्ट फाउंडेशन जो है वो कुछ ऐसे काम करती है कि इन 25 जोड़ों को सिलेक्ट किया है, जैसे उसमें क्रिश्चियंस भी होते हैं और उसमें मुसलमान भी होते हैं, उनके पॉप को और कारी साहब को निकाह के लिए अरेंज किया जाता है, एक डेट सेट कर ली जाती है और उस पे उन बच्चियों को जो है कुछ जहेज का सामान भी दिया जाता है जो बेसिक नीड्स होती हैं और बेहतरीन दिया जाता है। और उसके अलावा उनके 8-8, 10-10 मेहमानों को बुला लिया जाता है पांचों साइड से एक कंबाइंड फंक्शन किया जाता है जिसको मैस वेडिंग का नाम दिया जाता है। और इस दफा भी 25 जोड़े हैं हमारे फाइनल हुए जिनकी शादियां और उनकी तैयारियां जोरों शोर पे चल रही हैं और इन लोगों को ये जहेज का सामान दे के हम लोग इनकी शादियां करवा के इनको दुल्हनों को तैयार भी हम लोग करवाते हैं, उनका जितना जरी का सामान है वो हम लोग उनको देते हैं और इवन दुल्हे की शेरवानियाँ और उनके बोस्की के सूट्स और उनके जूते और सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जब आप लोगों को ये डिटेल्स वेबसाइट पे या जैसा कि मालूम हुई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला इन जोड़ों को सलामत रखे। जोड़े तो अल्लाह ताला बनाते हैं लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं अल्लाह ताला के इस काम को और इस सुन्नत को कि हर इंसान को जो है ये सुन्नत पूरी करनी चाहिए कि वो निकाह करे और ज़रूर अच्छे तरीके से करे। तो ये गरीब लोगों के काम आना सर होप अपने फाउंडेशन का एक आप कह लें कि ड्यूटी है इंशाल्लाह और हर किसी की होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस दफ़ा भी इसको बेहतरीन कबूल फरमाएंगे
2: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अल्लाह आपको अजर दे, आप सबको अजर दे इसका। अच्छा, ये फरमाइए कि क्या सिर्फ मुस्लिम वेडिंग्स ही करवाते हैं या आपका जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ भी कुछ तवज्जो देते हैं?
3: जी बिल्कुल, हमारे साहब जैसे मैंने कुछ जिक्र किया कि हम लोग क्रिश्चियंस को भी जो और कम्युनिटीज हैं उनको भी फोकस करते हैं एज फॉर एज ह्यूमैनिटीज कंसर्न। हमारी प्रेसिडेंट का वीएन है कि इंसानियत जहां जहां है वहां वहां जरूरतें हैं। तो जब इंसान ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर ये माशरा नहीं चल सकता है सर। आजकल यही मुश्किल दौर का हिस्सा है लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला के कुछ ऐसे ब्लेस्ड लोग हैं जो कि ऐसे कामों और ऐसी तवज्जो और फिक्रात रखते हैं लोगों के लिए जिनकी वजह से ये माशरा चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमादुर रहमान साहब, हमारे पास माइनॉरिटी केसेस भी आते हैं जिसमें कुछ क्रिश्चियन लोग होते हैं मोस्टली और हम लोग उनके लिए स्पेशली उनके पॉप का फादर का अरेंज कर लेते हैं जो कि उनका निकाह करता है वहां पर आके उसको, और इसी तरह कारी साहब को बुला लिया जाता है जो मुस्लिम कपल्स होते हैं उनको हम लोग निकाह नामे पे प्रॉपर उनके साइन और उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है। तो बड़ा एक अच्छा और बड़ा खुशगवार इवेंट होता है जहां पर वेल विशिंगनेस जो है वो बहुत सारी मिल रही होती है। तो मुझे समटाइम्स फील होता है कि अल्लाह ताला ऐसे बहुत से काम करवाए जहां पर ऐसे लोगों की वेल विशिंगनेस और दुआएं जो है वो लगती हूँ। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए सर, बस आप देखें लगे हुए हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि करते रहेंगे ऐसे ही।
2: अल्लाह आप लोगों को मजीद हिम्मत दे और कामयाब करे मजीद आपके मकसद में। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। मैं आखिर में ये चाहूँगा कि आप हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए।
3: जी ज़रूर, मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली मुझे लोग जो हैं कई इवेंट्स पे जब मैं जाता हूँ अपने इवेंट्स पे और जब मुझे ड्यूटी करनी होती है तो मैं वहाँ पर कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम जो हैं वो ज़रूर शेयर करता हूँ बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो वर्ड्स ऑफ विजडम ज़रूर फैलाने चाहिए। सब लोगों को मालूम होता है, मालूम होते हुए भी जब लोग भूल जाते हैं और कुछ ऑफ ट्रैक हो जाते हैं तो वर्ड्स ऑफ विजडम को वहाँ पर रिमाइंड करना हम लोगों की ड्यूटी है। जैसा कि अब और किसी नबी ने तो आना नहीं, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उसके बाद उनकी उम्मत जो है वही उनका मैसेज जो है वो एक दूसरे तक पहुंचाएगी। तो वो इंसानियत का मैसेज जो कि हमारे दीन इस्लाम में है कि अव्वल दर्जा अगर लेना है तो एक अच्छी इंसानियत इंसान में होनी चाहिए, दूसरे की फिक्र होना ज़रूरी है। तो हमारे प्यारे नबी ने भी ये अमल जो है वो बहुत पसंद किया और आज में इंसान ऐसे हैं कि वो एक दूसरे का फिक्र और एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं रखते, जबकि हम लोग भूल रहे हैं। वर्ड्स ऑफ विजडम यही हैं कि हम लोगों को इंसानियत का ख्याल करना है और कि अपना ख्याल छोड़ के दूसरे का ख्याल करेंगे तो हमारा ख्याल अल्लाह ताला करते हैं। तो ये एक ऐसा एक सर्कल है, एक ऐसा एक चेन है जिसको हम लोग भूल जाते हैं समटाइम्स, लेकिन अल्लाह से उम्मीद का रखना जो है वो भी एक इबादत है और ना उम्मीदी तो वैसे ही गुनाह है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस काम में कामयाब होंगे और अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियां करते जाएंगे और हम लोगों से काम लेते रहेंगे इंशाल्लाह।
2: बिल्कुल जी, नाउमीदी तो कुफर है और अल्लाह से नाउमीद होना तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुसलमान को इस तरफ जाना चाहिए। हर मौके पे पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिविटी को जहन में रखना चाहिए, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप इंसान की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सारे जो आपके डायरेक्टर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, सभी माशाल्लाह अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट मैसेज और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए और इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अगले मंगल के रोज़ सुबह 3 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 93.6 बोरियत को भगा दो।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyawad.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आई एम डॉक्टर करार हैदर, एक नया प्रोग्राम लेके और एफओएसटी के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम लेके, नन अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी, डॉक्टर ताहिरा शुजा और डॉक्टर मुदस्सर अली शाह। हम इनसे जानेंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं चलूँगा डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी की तरफ, अपना तारुफ करवाइए डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी मुख्तसरन।
3: जी अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी, आई एंड माय पीएचडी डिग्री फ्रॉम सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब।
2: जी डॉक्टर ताहिरा साहब मुख्तसरन तारुफ करवाइएगा अपना।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिरा शुजा एंड आई एम वर्किंग हियर एट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सिंस 2021। आई कम्प्लीटेड माय PhD from Government College University Lahore and I have research experience and got the opportunity to work at the institute like National Center for Physics Islamabad and University College London.
2: Thank you Dr. Tahira Sahiba. Dr. Muzaffar Ali Shah, aap batayega ki aap mukhtasaran taaruf apna karwaiye.
5: I'm Dr. Muzaffar Ali Shah. I did my PhD from GC University Lahore. And I have an experience in plasma waves and instabilities. So that's my research area. And I have 20 publications in international reputed journals. And I'm still working here. I'm working here in UCB since 2023 as associate professor.
2: Thank you very much. Ji, Dr. Atif Rahman Alvi sahab, chunki aap physics department mein, UCP mein, aapka stay sabse purana hai, isliye batayega thoda sa मुख्तसरन यूसीपी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में।
3: डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब इस तरह से है कि यूसीपी डिपार्टमेंट से पहले हम लोग यूसीपी ज्वाइन करने से पहले हम लोगों ने जब ये फिजिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट किया वो 2016 थे, नो डाउट कि मेरी ज्वाइनिंग जो है वो इन पीजीसी में 2008 की है। देन आफ्टर डैट 2016 में जब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किए यहाँ यूसीपी में, तो पहला बैच था, तो पहले बैच को अभी क्योंकि वो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी, देन इसे फॉर द टाइम बीइंग शिफ्ट कर दिया गया फिरोजपुर रोड कैंपस 2C में। वहाँ से हम लोग वर्किंग करते रहे और इसके जो प्रोग्राम फिजिक्स के थे, मैथ्स के और बाकी हमने कंटिन्यू किए। देन 2019 अगेन वो शिफ्ट हो यूसीपी बिल्डिंग, जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हम लोग, तो यहाँ प्रॉपर फिजिक्स का डिपार्टमेंट कंटिन्यू हुआ। जी फिजिक्स डिपार्टमेंट पे 2019 में यहाँ जब कंटिन्यू हुआ तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हमने इस पर वर्किंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती गई और हमारे पास उसके बाद 52 स्टूडेंट्स भी बैच में आए एंड देन सो ऑन वर्किंग थी, मिलजुल के टीम वर्क के साथ था।
2: डॉक्टर अलवी साहब शुक्रिया आपने तारुफ करवाया। डॉक्टर ताहिरा साहब आप जब आई फिजिक्स डिपार्टमेंट में तो आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट को कैसा पाया?
4: फिजिक्स डिपार्टमेंट में चूँकि ये मेरी यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट जॉब थी और मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ था, और ये हमारी खुशकिस्मती कि डॉक्टर करार हैदर जैसे एचओडी हमें मिले जो कि हमें फ्री हैंड देते हैं काम करने के लिए, गाइड करने के साथ साथ फिर वो हमारी जो अपनी इनिशिएटिव्स हैं उनको सप्रेस नहीं करना और उसको इनकरेज करना है। उसमें रिस्क भी होते हैं लेकिन ही नेवर नेवर एवर यू नो ही इज़ नेवर एवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड इनकरेजिंग अस। तो तो उसकी वजह से हमने बहुत सीखा और मेरे ख्याल में कि जो मेरा स्किल सेट जो है 3-4 साल में यहाँ पे काम करते हुए डेवलप हो गया है, वो मैं कहीं और शायद 10 साल में भी ना कर सकूँ। उसके बाद फिर चूंकि ये रिलेटिवली एक न्यू डिपार्टमेंट था और इसमें फिर हमने बहुत सारी इसको एक लेवल पर पहुँचाने के लिए जो कि आजकल के मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम्पीट कर सके, उसके लिए उस लेवल तक पहुंचाने के लिए हमने मेहनत भी बहुत की इकरार साहब की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, और फिर उसमें सीखा भी हमने बहुत ज़्यादा और मज़ा भी आया और अभी तक हम इंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम ऐसे ग्रो करते रहेंगे।
2: जी बहुत शुक्रिया, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कितनी मेरी हेडशिप में आप कंफर्टेबल हैं। बहरहाल कोशिश तो है मेरी। अभी डॉक्टर मुज़स्सिर अली शाह, सिंस यू ज्वाइन इन 2023 एंड आई वाज लकी टू बी वन ऑफ द पैनलिस्ट्स व्हेन यू वर बीइंग इंटरव्यूड, राइट? सो आप जब आए और बताता चलूं मेरे मौजे सुनने वालों, डॉक्टर मुद्दसर नजर सॉरी मुद्दसर नजर क्रिकेटर जेन में आ गए, माशाल्लाह सलामत रहें, ऐसे ही होता है कि ये आए थे नर्स से, तो नर्स आपको पता ही है कि सुरैया से ज़मीन पे आ जाना बकौल इकबाल के शेर के। मैं इनसे पूछूंगा आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा नर्स छोड़ के और फिजिक्स डिपार्टमेंट UCP में आना।
5: थैंक यू सर। अगेन डॉक्टर ताहिरा की बात को लेके आगे चलूंगा कि इट्स एन ऑनर टू सर्व अंडर द काइंड लीडरशिप ऑफ डॉक्टर करार। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ फील हुई नर्स से ज़्यादा जो बेहतर मुझे चीज़ फील हुई कि यहाँ पर थोड़ा सा ओपननेस थी और ये कि डॉक्टर करार की तरफ से गैर ज़रूरी प्रेशर नहीं था किसी चीज़ के लिए, और हम इंडिविजुअली भी हम लोग काम करते रहे, अपने इनिशिएटिव्स लेते रहे और अभी तक हम ले रहे हैं ऐसे इनिशिएटिव्स और उसमें हमेशा जो है वो करार साहब की सपोर्ट रही है। तो ये चीज़ एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे इनक्रेजिंग लगी। यहाँ पर फैकल्टी का जो रवैया था वो भी बहुत इनक्रेजिंग था, यहाँ पर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को बैक इस्लामाबाद छोड़ के आया हुआ था तो यहाँ पर लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर मिला जिसमें काम करने का मौका मिला लोगों के साथ। यहाँ पर हमने फिर फिजिक्स के प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर भी किया, एमफिल के प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर किया, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। तो ये सिर्फ जो है वो डॉक्टर करार की सपोर्ट की, जैसे कि जो भी हमने इनिशिएटिव लिए उनको इन्होंने सपोर्ट किया।
2: बहुत शुक्रिया आपने तफसील से बताया। और मौजे सामईन, अब हम बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Boston, University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक. हम बढ़ते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ. आप जानते हैं कि आज हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट मौजूद है. 7 डिपार्टमेंट्स हैं FOST के मातहत और 7वां डिपार्टमेंट फिजिक्स है. आज आखिरी प्रोग्राम है. डॉक्टर ताहिरा साहिबा, आपसे शुरू करूंगा. आप मुझे ये बताइएगा कि प्योर साइंसेज जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, ये क्यों अपनी कदर खो रहे हैं?
4: सर, ये मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि वन कैन नेवर डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक साइंसेस. उसके बगैर मुमकिन नहीं है. लेकिन अगर हम देखें, एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी. अब बेसिक साइंसेस जो हैं वो हो चुकी हुई हैं, उनके बारे में रूल्स, प्रिंसिपल्स वो डेवलप हो चुके हुए हैं, लॉज डेवलप हो चुके हुए हैं. उनको अप्लाई करके अप्लाइड साइंसेस जो हैं वो अब ज़्यादा ग्रो कर रही हैं.
3: डॉक्टर अलवी साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँगा कि क्या वजह है कि बेसिक साइंसेस जो कि एक शजर की मानिंद होती हैं, उससे हट के लोग फल खाने पे लगे हुए टेक्नोलॉजी की तरफ, आखिर क्या वजह है?
5: सर, वजह यह है कि देखें, बेसिक साइंस को किसी तौर पे हम इग्नोर नहीं कर सकते. बेसिक्स, जैसे कहते हैं कि रूट्स हैं तो ट्री ग्रो करता है. सो रूट्स आर द फंडामेंटल्स. डेट्स वाई कि बेसिक साइंसेज आर द फंडामेंटल्स. इनकी बेस पर ही अब ये न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज अब ग्रो कर रही हैं. तो हमें ज़रूरी है कि हम पहले इनको, हाँ, इसमें कुछ न्यू एडवांसमेंट लेकर आएँ. इन बेसिक साइंसेज में हम अपने रोड मैप को रीशेड्यूल करें, रिव्यू करें और उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ, अप टू डेट करें, स्टेट ऑफ द आर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये हमारा बेसिक साइंसेज पीछे नहीं रहेंगे फिर इसमें.
3: जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया. डॉक्टर मुजस्सर अली शाह साहब, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या वजह है कि बेसिक साइंसेज अपनी कदर क्यों खोती जा रही हैं?
6: जी सर, जिस तरीके से डॉक्टर ताहिरा और डॉक्टर अलवी ने बात की, बिल्कुल सही है कि बेसिक साइंसेज जो हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है स्टार्टअप है. यहीं से हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं. जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन पे लोगों का फोकस आजकल ज़्यादा है. लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा अगर इसको बताना चाहूँ, कि जैसे आज से कुछ साल पहले एक इंजीनियर वकार अजीम साहब आए थे टीवी पर, उन्होंने पानी से गाड़ी चलाने की एक
3: नाकाम
6: कोशिश की थी और उसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्विंस भी हो गए थे कि मतलब ऐसा पॉसिबल है. लेकिन एज अ बेसिक साइंस एक्सपर्ट, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने फौरी तौर पर बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल बाय जस्ट यूजिंग अ सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो इसका मतलब है, जब तक आपके पास बेसिक साइंस का नॉलेज नहीं होगा, आप जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में भी जो है वो एक्सेल नहीं कर सकते. सो वी नीड कि ये इनको हमें छोड़ना नहीं है. लेकिन जैसे आतिफ साहब ने कहा कि इन्हीं में हम ऐसी एडवांसमेंट लेके आएँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा अप्लाइड नेचर की हो, और उसके ज़रिए जो है वो हम बेसिक साइंसेज को दोबारा अपने मुकाम पर लेके आ सकते हैं.
3: बिल्कुल ठीक. डॉक्टर अलवी साहब, आप बताइएगा कि जैसे हमने कोशिश की फिज़िक्स को दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए और दिलवाने के लिए, तो हमने BS फिज़िक्स प्रोग्राम को हमने रिस्ट्रक्चर किया. थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसरन, क्योंकि बाकी भी पैनलिस्ट से यही सवाल मैं करूँगा.
5: जी सर, बिल्कुल सर, हमने रीस्ट्रक्चर किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पहले तो इसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई. 4 स्पेशलाइजेशन हमने कहा कि BS फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेडिकल फिजिक्स में थी, AI फिजिक्स में थी, फिर नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स में उसमें हमारे पास थी. देन जब रीस्ट्रक्चर फर्दर किया तो हमने एक और फिर बैचलर प्रोग्राम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया फिजिक्स डिपार्टमेंट ने, अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ यू सर, डॉक्टर करार, BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग. और स्टेट ऑफ द आर्ट है, एज यू नो, जैसे कि नाम जो है टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग, बिकॉज कंप्यूटिंग एंड AI इन्वॉल्व इन ऑल फील्ड्स. डेट्स वाई विदाउट देयर वी कांट ग्रो. सो ये हमने कुछ इसमें कुछ न्यू इंट्रोड्यूस.
3: वेरी ट्रू. डॉक्टर ताहिरा साहब, मजीद इस पर रोशनी डालेंगे, BS कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग, और मजीद इस पर क्या क्या है?
4: ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, जो एक परफेक्ट ब्लेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का. इट फोकसेस ऑन द डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं बात करूं इसके कुछ की बेनिफिट्स की, तो इसमें इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज स्टूडेंट्स को मिलता है, लाइक ट्रेनिंग इन VLSI डिज़ाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज विच परफेक्टली अलाइंस विद द करंट टुडेज डिमांड. और फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, लाइक माइक्रो एंड नैनो फैब्रिकेशन ऑफ डिवाइसेस, सर्किट डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग में. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स विल गेट एन एक्सपोजर टू कटिंग एज रिसर्च इन नैनो डिवाइसेस, स्पिनट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स.
3: बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आप भी इस पर कुछ अपना इजाफा कीजिएगा कि इस नए प्रोग्राम के तारुफ करवाने से क्या हम जदीद तकाजों को पूरा कर पाएंगे.
6: जी सर, इसमें हमने बेसिक जो कोर्सेज हैं उनको भी साथ रखा है, जैसे हम इसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी पढ़ा रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी लेके चलेंगे, फिर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे इसको फोकस करेंगे. उसके बाद फिर हमने इसमें ऐसे प्रोग्राम्स एंटर किए हैं जो कि मतलब एडवांस लेवल के हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप मैथमेटिकल मैथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है ये जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हुए उनके ऊपर फिजिक्स भी इम्प्लीमेंट करें, मैथमेटिक्स भी इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको कंप्यूटिंग के थ्रू भी जो है उसको करवा रहे. तो ये जैसे डॉक्टर थायरा ने कहा ये ब्लेंड है बेसिकली तीन फील्ड्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटिंग. तो इस वजह से यहाँ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी कि इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और वहाँ पर उनके लिए जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे अपनी जॉब्स को सिक्योर करना बहुत आसान हो जाएगा.
3: जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बताया. सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये नया इनिशिएटिव जो है वो अल्लाह ताला इसको बार आवर करे और समर आवर करे. इसी के साथ हम चलते हैं एक और वक्फे की तरफ, कहीं मजा आइएगा, सुनते रहिए यूसीपी की दुनिया.

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: जी लिए लिसनर्स वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर अलवी, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों की ज़हनी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा हो पाए?
2: जी डॉक्टर साहब, इसमें क्योंकि हमारे पास करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है, तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ इंगेज करने के लिए हम जैसे फेस्ट है हमारा जो पिछले 2 साल से चल रहा है और हो रहा है, इनकाद हो रहा है उसका, तो उसमें हमने बाकायदा इंटरटेनमेंट के लिए ह्यूमन लूडो टाइप ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। इसके अलावा फिर उनमें कम्पटिशन डेवलप करने के लिए जो है पोस्टर कम्पटिशन्स का है, देन ब्रेन फेस्ट का है, गेम्स का है, इस तरह प्रोजेक्ट्स का है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने उसका कंपटीशन है, देन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए कि एक हमने फिजिक्स डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर करार साहब ने उसको बाकायदा आगे प्रोसीड किया, जिसमें था कि जी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक विजिट करवाया गया यहाँ पर उनके जो मेम्बर पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे एक सेमिनार करवाया गया, और उस सेमिनार में फिर बाकायदा बच्चों के लिए जो एक सीखने का बहुत सा लम्हा था, बहुत से अच्छा इंटरटेनमेंट मौजूद थी। इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हम कोशिश करते हैं कि इनेकाद करें।
1: जी डॉक्टर तारा साहब, आप इसमें मज़ीद इजाफा करेंगी?
3: जी, चूँकि मेरा फील्ड नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, तो और ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें रिसर्च और हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशंस की हैं, जैसे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फिज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर इसमें इनमोल में हम स्टूडेंट्स को नैनो मेडिसिन पे और मेडिकल फिज़िक्स पे रिसर्च करा रहे हैं।

0: इवॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हम बाकी भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह जो हैं वो भी अरेंज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, और इन इंस्टीट्यूट्स में भी जिनका मैंने जिक्र किया है कि वो 6 मंथ्स की शॉर्ट जो इंटर्नशिप्स हैं वो करें, उनको सर्टिफिकेशन मिले जो आगे करियर में भी उनको हेल्प करे, इसी तरह से उनको फिजिक्स के लॉज जो वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं वही उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का भी मौका मिले।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजस्सर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फेस्ट के दौरान और वैसे भी पीछे भी हमने एक दो जो पंजाब कॉलेज से भी हमने एक बुलाए थे उसके बारे में बताइए वो एक्टिविटीज़ क्या थी।
2: जी हमने पीजीसी से जो है वो एक हसन फरीद साहब हैं जिनका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, वो एक बड़ी डायनेमिकल किस्म की वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो फिजिक्स के बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजीली वे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने उनको बुलाया, एक बहुत अच्छी गैदरिंग थी हमारे स्टूडेंट्स की,
1: स्टूडेंट ने उसको बहुत एंजॉय भी लोग आए थे।
2: जी जी बाकी डिपार्टमेंट से भी लोग आए और उसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बहुत अप्रिशिएट किया। वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट लिया, फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज में इंटरेस्ट लिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से परसीव भी किया कि ये चीज़ें कैसे, इवन ये कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने में पार्टिसिपेट किया और वो उन्होंने इसको एंजॉय किया। फिर उसके साथ साथ हमने जो है वो एस्ट्रोनॉमी नाइट का भी एक अरेंज किया हुआ था जिसमें हमने एक टेलीस्कोप जो है वो अपने एक हमारे एक कोलीग हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने जो है वो यहाँ पर अरेंज की, वो हमने यूसीबी की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हमने इंस्टॉल करके वहाँ से जो है वो सितारों का नज़ारा किया, वो भी हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गई। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट अरेंज करता रहता है जिसमें हम स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ताकि खेल खेल में जो है वो स्टूडेंट जो है वो
1: अपनी मुझे बताइएगा जो आपका है खासा है माइंड गेम या ब्रेन गेम्स वो
2: जी जी ये मतलब मैंने यहाँ पर 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे यहाँ पर एक फेस्ट का जो चल रहा था उसमें हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, कुछ ब्रेन गेम्स जो ऐसी गेम्स जो कि मतलब बोर्ड गेम्स कहलाती हैं और अब पाकिस्तान में बहुत रेयरली जो है वो खेली जाती हैं, तो उससे हमने स्टूडेंट्स को जरा स्टिमुलेट करने के लिए उनके माइंड को और
1: थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करने के
2: जी जी बिल्कुल, तो उसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे पास जो पीजीसी के जो स्टूडेंट्स आए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उन्होंने जो पहले साल था उसमें उनका इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद जब दूसरे साल वो आए दे ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस गेम्स, तो फिर उनका इंटरेस्ट उससे डबल हो चुका था कि जो पहली दफ़ा अगर फर्ज करें कि हमारे पास किसी एक गेम के लिए 10 से 12 रजिस्ट्रेशंस आई थी तो अगली दफ़ा वो 50-60 हो चुकी थी। तो हमें फिर उसमें जो है वो फिर हमें एक कट लगाना पड़ा कि हमारे पास इतने अवेलेबल हैं तो हम इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो ये एक मतलब एक बेहतर उसके तरफ गया। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इस चीज़ को
1: कंटिन्यू,
2: फन फैक्टर भी था और स्टूडेंट्स ने बहुत इसको एंजॉय किया
1: माशाल्लाह। डॉक्टर तारे साहब आपसे पूछूंगा कि जो हमने जो नया प्रोग्राम बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस करवाया है उसके लिए आप ही के सजेशन पे आपने मुझे बताया था कि हम एक उस पे एक प्रीकर्सर के तौर पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और एक छोटा सा कोर्स भी करेंगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 2 से 3 हफ्तों पे मुश्तमिल होगा, वो इनिशिएटिव क्या था हमारे सामने को बताइएगा।
0: यस सर, ये हमने एक 3 वीक्स शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका टाइटल है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स, तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो दैट कवर्स द इंट्रोडक्शन टू बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो इसके लिए जो स्टूडेंट्स को इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी एक इंट्रोडक्टरी कोर्स, ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो उनके लिए इंट्रोडक्टरी कोर्स के तौर पर बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड मॉड्यूल्स में ये सेकंड मॉड्यूल गिव्स द डीपर नॉलेज टू द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड वाइल द थर्ड मॉड्यूल विच विल बी कवर्ड इन द थर्ड वीक ऑफ द शॉर्ट कोर्स इसमें हम कवर करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ दिस नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एनर्जी

0: इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो ये एक तो 3 वीक्स का जो फुल करना चाहें शुरू से इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल से लेकर एप्लीकेशन तक, और इसमें हमने ये भी फैसिलिटेट किया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी एक मॉड्यूल में या 2 में या 3 में तो वो इंडिविजुअली सिंगल मॉड्यूल में या 3ों में उसके लिए वो रजिस्टर्ड हो सकता है।
1: और इनके फ्यूचर, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसर, क्या फ़ायदा होगा बच्चों को?
0: बेसिकली ये स्टूडेंट इनको, चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, एक तो ये इनके लिए प्री रिक्विजिट हो जाएगा अगर बीएस प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग सिस्टम वो ऑप्ट करते हैं तो। उसके अलावा इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर देखा जाए, जो कंसल्टेंट्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में, और फिर सोलर सेल्स की इंडस्ट्रीज़ है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की इंडस्ट्रीज़ में, तो उनको नॉलेज होगा उन डिवाइसेस के बारे में और वो उसको बेटर कर सकते हैं। फिर जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो आजकल यही जो रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनकी नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, तो उसमें अगर कोई एंटर होना चाहता है तो उनको एक बेसिक नॉलेज ये कोर्स प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च के लिए एज सच बेसिक साइंसिस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये अप्लाइड कोर्सेज उस तरह से नहीं पढ़ाए जाते, तो जब आप रिसर्च के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली आपको अप्लाइड लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है, तो ये उनको रिसर्च की एक बुनियाद फराहम करता है।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब। आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके और हेड ऑफिस के साथ मिलके एक, और फिर आपने एक जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी, 2 आपके हैं आप जो काम कर रहे हैं, उनको मुख्तसर बताइएगा 2 मिनट में।
2: जी इनिशियली हमने एक आरवो कंपनी है जो कि पीजीसी के साथ काम करती है, दे आर डिज़ाइनिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। उसमें जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या 9th-10th के, उसको एक बड़ा इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है, ग्लास बोर्ड है जिसके पर आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स देते हैं, और उसकी खसूसियत यह है कि उस के साथ साथ आप उसमें एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। मींस आप एक तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके साथ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है और आप उसी को रोटेट करते हुए उसमें दिखा रहे हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशन, मतलब 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जो है वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। तो वो एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है जिसमें आप खुद से भी राइट डाउन कर रहे हैं, इसमें वॉइस भी दे रहे हैं, उसके अलावा आप खुद भी पर्सनली अवेलेबल हैं, और उसके अलावा वह एनिमेशंस और वीडियोस भी उसके साथ चल रही हैं। तो उसके साथ हमने एक शॉर्ट सा एक वीडियो लेक्चर बनाया जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर था, जिसमें आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट को। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमने उसमें, और अब हम उसको आगे लेके चल रहे हैं कि हम उसको आगे जाएं और हम पूरा जो कोर्स है अप्लाइड फिजिक्स का, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पूरे कोर्स को जो है वो डिज़ाइन करें और उसके लेक्चर्स जो हैं उस पर डिवेलप करें।
1: और एक और इंटरनेशनल आपका जो इनिशिएटिव है,
2: जी जी
1: इंडोनेशिया के साथ,
2: जी जी इसी तरीके से हम इंडोनेशिया एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कुछ उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर्स देंगे
1: online.
2: अभी ऑनलाइन, अभी ये इनिशियली है तो हम 2 से 3 लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसकी सक्सेस के ऊपर कैसा होता है। इसी तरीके से यहाँ से मुझे नॉमिनेट किया गया है तो मैं वहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर दूंगा 2 से 3, तो फिर देखेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इन द लॉन्ग टर्म हम इसको आगे भी लेके चलेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, मजीद लेक्चर्स और मजीद कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: दैट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द 2 यूनिवर्सिटीज इन बिटवीन द 2 स्टेट्स,
2: यस,
1: पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया,
2: जी जी बिल्कुल,
1: व्हिच इज अ बदली इस्लामिक कंट्री,
2: जी जी बिल्कुल,
1: राइट। डॉक्टर अलवी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ अरसे बाद मार्केट में जाएंगे फॉर सीकिंग डिफरेंट जॉब्स, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
3: बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि हमारी जो है एक किस्म का पब्लिसिटी भी है, तो मैं उन्हें बस यही एक इकबाल के एक शेर में कहूँगा, उन्हें मैसेज दूंगा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।
1: सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत अच्छा डॉक्टर तारा साहब। इस तरह मुख्तसरन
0: जी सर, मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अब आपके पास नॉलेज है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग बिग एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट फॉर यू।
1: डॉक्टर मुदस्सिर साहब।
2: जी सर, हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स का जो है, मतलब फिजिक्स ऐसी फील्ड है जो कि हर जगह पर इम्प्लीमेंटेड है। हमने यहाँ तक देखा है कि हमारे जो बीएस के स्टूडेंट, जैसे मेरा नस का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने बीएस किया फिजिक्स में और उसके बाद वो मैकाट्रॉनिक्स में जो है उन्होंने एमफिल किया। इसी तरीके से वो आगे और मेटलर्जी की तरफ चले गए। इस तरीके से बीएस फिजिक्स जो है वो हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेड है,
1: बेसिक प्लेटफॉर्म।
2: जी, बेसिक प्लेटफॉर्म है। तो हमारे स्टूडेंट्स को बल्कि घबराने चाहिए, दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। बाहर की आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप एमएस के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है, सिर्फ फिजिक्स नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स के अलावा फिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अप्लाइड नेचर है, उसकी वजह से आप एप्लीकेबिलिटी की वजह से आप हर जगह पर जो है, जहां कहीं पर इसका ब्लेंड मौजूद है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं।
1: बहुत शुक्रिया, चूंकि बीइंग एचओडी फिजिक्स, मेरा भी बनता है कि मैं भी अपने पास आउट होने वाले टू बी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम दूं। तो जैसे अलवी साहब ने मुझे एक मशल राह फराहम कर दी कि जी, इकबाल का एक शेर है कि आसमानों पर नजर रख अंजुमो महताब देख, सुबह की तामीर करनी है तो पहले ख्वाब देख। सो अपने ख्वाबों को देखिए रात को, क्योंकि इकबाल के बकौल ख्वाबों की दुनिया भी एक बिल्कुल दुनिया होती है जो एग्जिस्ट करती है। अब दोबारा से वापस जीती जागती दुनिया में आ जाते हैं। ख्वाब देखिए, उन्हीं ख्वाबों की तामीर के लिए दिन रात मुशक्कत कीजिए, मेहनत कीजिए, जाफिशानी से, ईमानदारी से, सिदके दिल से, और कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। इसी के साथ मैं अपने तीनों मेहमानों का, डॉक्टर मुजस्सिर अली शाह का, डॉक्टर ताहिरा शुजा का और डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी का मशकूर हूं कि आप आए और हमारे आज के प्रोग्राम में आपने चार चांद लगाए। आखिर में हमेशा कहता होता हूं, पाकिस्तान

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magical Point 6.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: 50166 on 1.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
7: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.